नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज है गुरुवार। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 सितंबर सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय बजे हैं सुबह के 5:58 और 43 सेकंड। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। कृषि संबंधी कुछ बातें आपको जानकारी दिलवाते हैं खेती की बातें कार्यक्रम के तहत। पौधों की कटाई छटाई कितना आवश्यक है, वाचन स्वर है प्रतिमा वर्मा का, पूर्व प्रसारित जानकारी है।
3: खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं आज की कड़ी में है पौधे की कटाई छटाई क्यों आवश्यक है। श्रोताओं यदि फल देने वाले पौधे में कटाई छटाई या कृदंत का कार्य न किया जाए तो वह जंगली पौधे की तरह बढ़ने लगते हैं, उन पर कोई भी फल पैदा नहीं होते। हालांकि सभी फल देने वाले पौधे में कटाई छटाई क्रिया आवश्यक नहीं पड़ती है। यदि फल देने वाले पौधे में कटाई छटाई का कार्य नहीं किया जाता है तो वह जंगली पौधे की तरह बढ़ने लगते हैं और उन पर कोई भी फल नहीं हो पाते। लेकिन कुछ पौधे हैं जिनकी कटाई छटाई नहीं की जाती है, जैसे कि छोटे फल वाले पौधे केला अनानास और पपीता आदि को अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही बढ़ने दिया जाता है। मगर बहुत से पर्णपाती फल वृक्ष जैसे सेब नाशपाती आड़ू और अंगूर में नियमित रूप से कटाई छटाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे में कटाई छटाई कर सूर्य के प्रकाश को पौधे की जड़ों तक पहुंचने के लिए स्थान बनाया जाता है। वृक्षों को अधिक मजबूत बनाया जाता है, पौधे को सुंदर बनाया जाता है, नए फल उत्पन्न करने वाली शाखाओं की वृद्धि तीव्र होती है, पौधे को पर्याप्त मात्रा में हवा एवं प्रकाश संश्लेषण हो पाता है, साथ ही रोगों एवं कीटों से भी रोकथाम हो पाती है। घने कलियों या छोटे पत्तों का विरलीकरण करके फलों का आकार बढ़ाना होता है। लेकिन कटाई छटाई करने के कुछ नियम भी हैं। सबसे पहले पौधे में मरी या सूखी हुई रोगग्रस्त एवं कमजोर शाखाओं को काटकर अलग करना चाहिए। पौधे की आर पार जाने वाली और एक दूसरे पर चढ़ी हुई शाखाओं को काट देना चाहिए। अगर शाखाएं जमीन के बहुत संपर्क में है तो उन्हें काट देना चाहिए। शेष बची हुई शाखाओं को या उनके कुछ हिस्सों को इस तरह से काटना चाहिए कि कटान साफ एवं सीधे हो। अगर पौधे में कार्बोहाइड्रेट की कमी से फलन कम हो तो जड़ों का कृदंत कुछ मात्रा में कर देना चाहिए। पौधे में छटाई दो विधि से की जाती है। पहली विधि है पिंचिंग। इस विधि के तहत तने या शाखाओं के ऊपरी सिरे 2 से 3 पत्तियों के साथ तोड़ दिए जाते हैं। इसे अधिक एक वर्षीय पौधे जैसे डहेलिया गुलदाउदी आदि में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से है वलियन। जब किसी तने या डाली से लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबाई में छाल वलय के रूप में काट कर निकाल दी जाती है तो इस विधि को वलियन कहा जाता है। अब जैसे अनार के वृक्ष में 3 से 4 साल तक फल लगने की क्षमता होती है और इसमें आयु बढ़ने के साथ ही साथ गिरावट आती है, नई वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए पुराने दलपुष्टों की छटाई मामूली रूप से हल्का विरलीकरण करने की जरूरत होती है। छटाई से फल कीटाणु गुणवत्ता बढ़ जाते हैं एवं अनुकूल इसमें प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। उच्च सघन छटाई से फल के आकार और उच्च ग्रेड के फल की पैदावार में वृद्धि होती है। पौधे की जब छोटी अवस्था में कटाई छटाई की जाती है तो उसके अधिकतर शक्तिशाली ढांचे बनकर तैयार हो जाते हैं तथा तेज हवा आंधी और तूफान आदि से भी सुगमता से वे नहीं टूट पाते। घने फल वृक्षों की शाखाओं को काट काट कर पौधे को खोल दिया जाता है जिससे हवा में प्रकाश अधिक मात्रा में पौधे के अंदर प्रविष्ट हो सके। फल वृक्षों की कटाई छटाई से उनकी ऊंचाई भी कम हो जाती है जिससे फलों की तुड़ाई सुगमता से हो पाती है और कम समय तथा कम खर्च के साथ ही वो उस तोड़ पाना संभव होता है। पौधे के ऐसे भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है जिन पर कीड़ों का प्रकोप हो या रोगग्रस्त हो जिससे ये और आगे ना पनप कर हानि पहुँचाए पौधों को। जब फल कलियाँ अधिक घनी पैदा होती हैं तो बीच से कुछ कलियों को निकाल देना चाहिए या फिर गुच्छे के नीचे से कुछ फलों को तोड़कर अलग कर देते हैं जबकि ये छोटे छोटे होते हैं। ऐसा करने से शेष फलों का आकार बढ़ जाता है। इस तरह से बहुत अच्छी फसल लेने के लिए उनकी कटाई छटाई करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ ही उन शाखाओं को हटाना महत्वपूर्ण है जो हर वैकल्पिक वर्ष में केवल फल देती है या बिल्कुल भी फल नहीं देती है। इस तरह से किसान भाई यदि पौधे की कटाई छटाई का विशेष ध्यान रखेंगे तो बागवानी फसलों की पैदावार अच्छी होगी। और आज की जानकारी यहीं तक।
2: अभी आप सुनीता अग्रवाल से सुन रहे थे खेती की बातें कार्यक्रम के तहत कुछ जानकारी। पौधों की कटाई छटाई कितना आवश्यक है, इस पर अभी आपने जानकारी प्राप्त की। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान का पाठ आइए अब सुनवाते हैं आपको।
4: एपिसोड नंबर 256।

लक्ष्मण को श्री राम की खोज में गया देख रावण यति का वेश धारण कर सूनी कुटी के समीप पहुंचता है। सीता जी को अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं सुनाकर वो उनके मन में भय अथवा प्रेम जगाने के प्रयत्न करता है। एक यति के मुंह से दुष्टतापूर्ण गुहार सुनकर सीता के मन में संशय उत्पन्न होता है कि तभी रावण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। उसका नाम सुन और रूप देखकर सीता भयभीत होती हैं, किंतु धैर्यपूर्वक उसको श्री राम के पराक्रम की धमकी देती हैं। क्रुद्ध रावण बलात् उन्हें रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चलता है। सीता का विलाप सुन मार्ग के सभी जड़चेतन प्राणी व्यथित होते हैं। गिद्धराज जटायु सीता जी को पहचानकर रावण से उन्हें मुक्त कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु अपनी विनय का रावण पर कोई प्रभाव न होता देख जटायु रावण को पृथ्वी पर ला पटकते हैं और चूंच मार मार कर उसे घायल कर देते हैं।

करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते स्लिपर पड़त निशान। अर्थात जिस प्रकार कुएं की जगत पर रस्सी के बार बार आने जाने से वहां लगा पत्थर घिसकर चिकना हो जाता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। इस उक्ति के माध्यम से कवि ने हमें यह बताने की चेष्टा की है कि अभ्यासी और परिश्रमी व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी करना कठिन या असंभव नहीं। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी लगन से निरंतर चलता रहे तो एक न एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर पा सकता है। कुछ कर दिखाने के लिए केवल दृढ़ निश्चय ही नहीं, निरंतर परिश्रम और अभ्यास की भी जरूरत होती है। जिस प्रकार कुआं प्यासे के पास नहीं बल्कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। कहावत है कि रगड़ने से पत्थर में आग और तिलों में से तेल निकाला जा सकता है। सामान्य बुद्धि शक्ति और स्वल्प साधनों वाला व्यक्ति भी कुछ करने की ठान ले और कार्य करता रहे तो चमत्कार तक हो जाया करते हैं। मंजिल केवल शेखी बघारने वाले तेज चाल चलने वाले खरगोशों के लिए नहीं हुआ करती, बल्कि कछुए के समान निरंतर चलते रहने से मंजिल मिल ही जाती है। अतः हर प्रकार का आलस्य और भय त्याग कर धीरे धीरे ही सही लेकिन निरंतर चलते रहना चाहिए। सफलता की मंजिल निरंतर चलने वालों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीवन सजग रहकर निरंतर चलने वालों का ही हुआ करता है। एक बार की हार से चुप बैठने वालों को मंजिल नहीं मिलती। अर्थात सफलता प्राप्त करने के लिए बार बार और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है।

करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, वाचन स्वर था अनुपमा तिवारी का। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि हम लगातार निरंतर प्रयास करते हैं तो हमारी राह आसान हो जाती है और हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कोई भी काम आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन कठिन भी नहीं है, क्योंकि हमारी यदि उसमें निरंतरता है, जुनून है, लक्ष्य है, तो फिर वह राह आसान हो जाती है और अवश्य ही सफलता मिलती है। इसलिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। सफलता के लिए कभी भी छोटा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। आप जितना प्रयास करेंगे, जितना सीखेंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। तो ये था आज का चिंतन। आइए अब आराधना कार्यक्रम के तहत सुनवाएं कुछ भक्ति रचना।

0: सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का ही पाठ पढ़ेगा, जिसके गुरु हैं परम सत्य श्री हरि। प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी श्री हरि में विश्वास ना करें, श्री हरि से प्रेम ना करें, ये जीव का दुर्भाग्य ही है। भगवान तभी बसते हैं जब हृदय निर्मल होता है, हृदय हरि के भजन कीर्तन से निर्मल होता है।
1: हम हरि भजन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे।

0: इसी भजन के साथ ही भक्ति संगीत का आराधना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी डाल्टनगंज है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए हृदय रोग के कारण और निदान पर बातचीत सुनवाते हैं। डॉक्टर अजय कुमार से बातचीत कर रहे हैं श्री संजीव कुमार लाल।
1: आजकल की जिंदगी पर हम थोड़ी सी नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी भी तरह से किसी भी बीमारी से वो ग्रसित दिखता है। हमारा जीवन शैली भी काफ़ी अव्यवस्थित हो गया है, हमारे खान पान का तरीका बदल गया है और हमारे उठने बैठने के तरीके में भी बहुत ही बदलाव दिखता है। तो ऐसे अव्यवस्थित जीवन शैली में बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और आपको इसका पता भी नहीं लगता है। एक ऐसी ही बीमारी है हृदय रोग, या जिसे हम दिल की बीमारी कहते हैं, उससे आप पीड़ित हो जाते हैं और फिर समस्याएँ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि हृदय रोग होने का कारण क्या है और इसका होम्योपैथिक पद्धति द्वारा आप किस प्रकार उपचार कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे इस स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आमंत्रित हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार। अजय कुमार जी, स्वागत है। सबसे पहले हम जानें कि किस प्रकार हमारा दिल धड़कता है।
2: यह हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हार्ट हम लोग कहते हैं। हमारे शरीर में ये रक्त संचार इसके थ्रू होता है। पहले हम ये समझते हैं कि ये हार्ट काम कैसे करता है। ये हमारे शरीर में जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको शरीर से वापस लंग्स तक भेजता है। लंग्स में यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है और उस ऑक्सीजनेशन के बाद में ये फिर दोबारा हार्ट पे जाता है और हार्ट में जाने के बाद ये फिर पंप करके

0: ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में पहुंचाता है।
1: तो जो प्रमुख बीमारी है दिल की, वो कौन कौन सी है, लक्षण क्या है इसके, ताकि समय रहते हम इसका उपचार कर सके।
0: आज के समय में हार्ट अटैक पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कॉज है डेथ का। हर 5 में से 1 मृत्यु का कारण हार्ट अटैक ही है, जो एक गंभीर विषय आज के लिए बना पड़ा है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, वैसे ही हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है काम करने के लिए। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कोरोनरी आर्टरी उसे प्रोवाइड करता है। इसी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट काम करना बंद कर देता है, या पार्शियली हार्ट काम करने बंद कर देता है। इसी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, या फिर इस्केमिक आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। इसमें जैसे लक्षण में आएंगे चेस्ट पेन, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, पाल्पिटेशंस, सिनकोप्स, पेडल एडिमा, इस तरह के लक्षण आएंगे। थोड़ा सा इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चेस्ट पेन, आम धारणा बनी हुई है कि ये जो हार्ट अटैक में जो दर्द होता है वो लेफ्ट साइडेड होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लेफ्ट साइडेड ना होके ये सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। ये डिफ्यूज इन नेचर होता है, यानी कोई एक पर्टिकुलर जगह में नहीं होता। ऐसा लगता है कि पूरी छाती में ये दर्द भारीपन हो रहा है। इसका दर्द किस तरह का होता है, इसमें भारी वजन, ऐसा लगता है कि छाती पे कोई भारी वजन रखा हुआ है, या फिर कोई बेल्ट से जोर से कस दिया है छाती को, इस तरह का पेन को हम लोग एंजाइना भी बोलते हैं। ये कब होता है, ये तब होता है जब हम लोग कोई एक्सर्शन करते हैं, यानी जब हम लोग कोई मेहनत वाला काम करते हैं।
1: तनाव से हम जब गुजरते हैं तो ये लक्षण भी दिखाई पड़ने लगता है।
0: तनाव से भी हम लोग गुजरते हैं। एक्सर्शन मतलब जैसे कि हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, थोड़ा देर लंबा चलते हैं, या कोई भारी वजन उठाते हैं, और इसमें इस तरह का पेन होना चालू हो जाता है, और वो भी कुछ देर के लिए होता है। जो कि हम लोग रेस्ट करते हैं तो रेस्ट करने के बाद में ये आराम आ जाता है। इस तरह का दर्द को हम लोग एंजाइना बोलते हैं। ये चेस्ट पेन है, ये कार्डियक ओरिजिन का होता है। ये चेस्ट पेन 2-3 केसेस में नहीं होता है। जो पेशेंट डायबिटीज के रोगी होते हैं उसमें ये चेस्ट पेन नहीं होता। जो पेशेंट बुजुर्ग होते हैं, काफ़ी उम्र वाले होते हैं, उनको ये नहीं होता। और ये फीमेल पेशेंट को भी जनरली ये चेस्ट पेन नहीं होता है। कई बार लोग सीने में दर्द का भी बताते हैं, जो कि लोकल होता है, एक छोटे से जगह पे होता है। बोलते हैं कि चुभन जैसा दर्द हुआ। ये एक्चुअली में हार्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, ये मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है। हार्ट अटैक का कोई ये संबंध नहीं है इससे। एक लक्षण हुआ शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसे हम कैसे समझेंगे कि ये कार्डियक ओरिजिन का है? जब सोने के समय 2-3 मिनट तक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, दम फूलने लगता है, मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए दम फूलता है। सेम इसी तरह से पाल्पिटेशंस में भी होता है, दिल की धड़कन भी तेज होने लगती है लेटते समय, या फिर किसी तरह का हेवी काम करते समय बहुत पसीना भी आने लगता है, स्वेटिंग भी आने लगता है। तो ये सारे लक्षण मिलके सजेस्ट करते हैं कि ये कार्डियक ओरिजिन का है, यानी ये एंजाइना हार्ट अटैक का संबंधित है। इसके लिए हम लोग को तुरंत जाके इमरजेंसी में डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: इस तरह के जो लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप चिकित्सक की सलाह लें। और डॉक्टर साहब, हम सावधानियां क्या रखें और खान पान में हम किन किन चीज़ों से दूरियां बनाएं ताकि ये बीमारी नहीं हो और हम स्वस्थ रहें?
0: इसमें जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन लोगों को ज़्यादा तकलीफ देता है, ये जैसे जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई शुगर है, जो बहुत मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ओवरवेट है, या जेनेटिक्स यानी जीन्स में ही हार्ट की गड़बड़ी आई हुई है, ये उन लोगों को काफ़ी तकलीफ देता है। और इसमें हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसमें हम लोग जो कंट्रोल करते हैं वो लाइफस्टाइल में सुधार करने से है। यानी जो स्मोकिंग करते हैं उनसे ये आग्रह किया जाता है कि अब आप इसको स्मोकिंग ना करें। तो जो ओवरवेट होते हैं उनको प्रॉपर एक्सरसाइज, वज़न कम करने के लिए हम लोग सलाह देते हैं। डाइट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फाइबर्स हमारे खाने में ज़्यादा हो उसका हम लोग प्रयोग करें, एंटीऑक्सीडेंट्स खाने में ज़्यादा हो उसका प्रयोग करें। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जैसे फल, जैसे सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट अंगूर में होता है, काला वाला अंगूर में होता है, अमरूद में होता है। तो इस तरह के फलों का प्रयोग करें, जूस पिएं, फाइबर्स ज़्यादा खाएं। जैसे अब सेब खा रहे हैं तो उसका छिलका उतार के ना खाएं, छिलका सहित खाएं। इससे फाइबर्स भी हमारे शरीर को मिलेगा जो कि हार्ट को हेल्प करेगा। ओट्स जिसे हम लोग हिंदी में जई बोलते हैं, जई का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये भी बहुत हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, अगर हम लोग चाय पीते हैं तो ग्रीन टी पिए, और अर्जुन का एक छाल आता है, अर्जुन के छाल को उबाल के उसको

0: एनिमल मीट जैसे मटन हुआ, चिकन हुआ, फिश हुआ, एग योल्क हुआ, यानी अंडे के पीला वाला भाग, उसको ना खाएं। अब जैसे दूध भी अगर पीते हैं तो वो दूध में स्किम्ड मिल्क तो ही पिएं तो ज़्यादा अच्छा है, यानी चर्बी रहित दूध अगर हम लोग पिएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। कई लोग ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स में भी तेल होता है, तो ये तेल भी दिक्कत है। तो इस ड्राई फ्रूट्स को हम लोग अगर रात में छोड़ दें और सुबह उठ के खाएं, इसका तेल भी हम लोग को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लास्टली तेल, आजकल हम लोग तेल बहुत ज़्यादा खाना चालू कर दिए हैं, हर दिन के हर आहार में हम लोग का खाने में तेल होता है, तो इसको जितना कम से कम किया जा सके, तला भुना ऑयली फ्राइड फूड हम लोग ना खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा बात। इसको हम लोग होम्योपैथिक उपचार किस तरह से कर सकते हैं, तो दो तीन दवाइयां हैं जो कि अगर आपका हार्ट कमज़ोर है, अगर आपको पता है कि आपका हार्ट कमज़ोर है या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया हुआ है, तो दो तीन दवा हैं जो हार्ट के मसल्स को, हार्ट के वॉल्व्स को, हार्ट के सर्कुलेशन को यानी वेसल्स को भी डायलेट करके, तो ये रखता है। जैसे कि अर्जुना है, ये अर्जुना आयुर्वेदा में भी होता है, ये होम्योपैथी में भी होता है। ये अर्जुना एक अर्जुन का पेड़ होता है, उसका छाल को उबाल के पीने के लिए तो मैं पहले भी एडवाइस किया था। यही चीज़ हमारे होम्योपैथी में भी टिंचर फॉर्म में होता है। इसका डोज हम लोग लेते हैं 20 बूंद तीन बार 1/4 कप पानी के साथ। दूसरी दवा है कैक्टस, ये भी हार्ट की टॉनिक ही है और हार्ट का फंक्शन को ठीक करता है। ऐसे दो तीन और दवाइयाँ हैं जैसे कॉन्वोलेरिया, स्ट्रोफेंथस, कैम्फोरा और क्रैटिगस।
1: ये दवाइयाँ व्यक्ति स्वतः ही ले सकता है या चिकित्सक की सलाह से ले, जैसे अर्जुन की बात आपने करी?
0: जी नहीं, इसमें चिकित्सक की सलाह, होम्योपैथी में चिकित्सक की सलाह ज़रूरी होती है। उसमें ये ओरिजिन भी हम लोग देखते हैं। होम्योपैथी में हम लोग बीमारी को नहीं देखते हैं, बीमार को देखते हैं। पहले हम लोग उसकी सारी फिजिकल, मेंटल, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, क्रेविंग, एवर्जन्स, ये सारे चीज़ देख के उससे मैच करती हुई दवाइयाँ देते हैं, और प्लस एड ऑन में इस तरह की भी दवाइयाँ देते हैं जैसे अर्जुना हुआ, कैक्टस हुआ, क्रैटिगस हुआ।
1: अंत में क्या सलाह देंगे कि आप रोज़ सैर करें, थोड़ा सा आप फिजिकल वर्क भी करें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें?
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको सुनवाया हृदय रोग कारण और निदान पर डॉक्टर अजय कुमार से ली गई भेंटवार्ता। बातचीत कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। इसी के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होता है। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में।
3: प्रतिवार्ता श्रूयंताम, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरीकरणेन उत्पद्यमानानि आह्वानानि प्रति नगरीय स्थानीय निकायेभ्यः संवेदनशीलतां वर्धयितुं आह्वानं कृतवान्। एतेषु आह्वानेषु वर्धमाना जनसंख्या अथ भविष्यस्य जलावश्यकताः च प्रमुखाः सन्ति। असौ नगरीय स्थानीय निकायेभ्यः एतादृशानां चिन्तनशिबिराणाम् आयोजनस्य परामर्शम् अपि प्रदत्तवान्। श्रीमोदी ह्यः जलशक्ति मन्त्रालयेन आयोजितस्य द्विदिवसीयस्य राष्ट्रिय विभागीय जलशिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रस्य अध्यक्षतां कृतवान्। असौ जलसंरक्षण प्रौद्योगिकीनाम् अधिकाधिक प्रयोगाय आह्वानं कृतवान्। भारतीय निर्मातृभ्यः हितधारकेभ्यश्च कार्यकुशल समाधानानां विकासाय, तेषां व्यापकस्तरे प्रयोगाय च समर्थनं प्रदातुं समर्पित प्रदर्शनानां कार्यशालानां च आयोजनस्य परामर्शम् अपि दत्तवान्। एतेषु वैश्विकस्तरे प्रचलितानां श्रेष्ठ कार्यपद्धतीनां परिचयः अपि भवेत् इत्यसौ उक्तवान्। प्रधानमंत्री द्विदिवसीयस्य गहन विचार विमर्शस्य प्रशंसां कृत्वा अवदत् यत् शिखर सम्मेलने उद्भूताः क्रियान्वयन योग्याः समयबद्धाः च कार्यबिन्दवः निरन्तर समीक्षया तथा अनुभवाधारित अधिगम प्रक्रियया च अग्रे नेतव्याः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा बेल्जियम देशस्य प्रधानमंत्री बाडी वेवर अद्य नवदिल्ल्यां द्वैपाक्षिक वार्तां करिष्यतः। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सम्बन्धानां समग्र परिदृश्यस्य परस्पर हित संबद्धा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की कल अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृपया से फिर से सुन लें, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता दमा में आयुर्वेद कारगर। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर राम

अभी से कुछ देर बाद यानी कि 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग के तहत गायन। राग अहिर भैरव, कलाकार होंगे परवीन सुल्ताना। चंदन दास की गायी चंद गौजलों का आप लुत्फ ले सकेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत 7:45 पर। 8:00 हम आपको एक बार फिर से ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचारों के लिए। हिंदी अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से 8:30। 8:45 पर हम अपने स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत करेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन के तहत कुछ फिल्मी गाने। जोहार पलामू हमारे यह कार्यक्रम सुनेंगे आप सुबह 9:00। प्रस्तुति स्वर होगा निर्मला तिवारी का, संयोजन करता होंगे

प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन पाएंगे आप सुबह 9:30 बजे, 10 बजे एक बार फिर हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में अंग्रेजी हिंदी समाचारों के लिए। 10:10 से आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप विविध भारती के तहत सुनेंगे विविध भारती के विभिन्न कार्यक्रम। आज के मेहमान 10:10 पर रंग तरंग 11 बजे यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12 बजे। 1 बजे हिंदी समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे और

रांची से आकाशवाणी रांची से सुनेंगे आप प्रादेशिक समाचार 1:10 पर। दोपहर 1:20 से पुनः विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आप सुरीला सफर। अंग्रेजी हिंदी समाचारों के लिए पुनः शामिल होंगे दोपहर 2 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में और 2:30 से पुनः आप सदा बहार नगमों का आनंद ले सकेंगे विविध भारती के तहत आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 2:55 पर सुनेंगे आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से और 3 से सखी सहेली कार्यक्रम सुन पाएंगे आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 4 पुनः प्रादेशिक समाचारों का समय है और 4:02 से विविध भारती के तहत सुनेंगे आप हेलो फरमाइश। प्रादेशिक समाचार पुनः आकाशवाणी के रांची केंद्र से 5 प्रसारित होंगे और विविध भारती के तहत सुनेंगे आप छाया गीत 5:02 से। शाम 5:30 हम अपने स्टूडियो से एक बार पुनः आपको जानकारी देंगे सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों की।

5:35 पर सुनेंगे आप युवाणी कार्यक्रम के तहत चर्चा, जंक फूड से बचें और पौष्टिक आहार को अपनाएं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर यह कार्यक्रम, यह चर्चा होगी और विधि के क्षेत्र में रोजगार, इस पर भी चर्चा की जाएगी। अंजनी कुमार तिवारी की वार्ता सुनेंगे आप, समग्र शिक्षा अभियान पूर्व प्रसारित यह वार्ता होगी। प्रादेशिक समाचार 6:00 आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित होंगे और 6:02 से सुनेंगे आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से ही प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। 6:30 कृषकों को संबोधित प्रायोजित कार्यक्रम ग्रामीण सभा के तहत चर्चा होगी, जैविक खेती आज की आवश्यकता। आज की बात होगी बरसात में पशुओं की देखभाल पर और उद्यान एवं वानिकी पर। प्रमोद कुमार कृषि विशेषज्ञ पलामू से ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे आप, बातचीत करेंगे संतोष कुमार। आज की नसीहत जल संरक्षण पर और मौसम विभाग से प्राप्त मौसम की जानकारी, पलामू की मंडी से प्राप्त आज का बाजार भाव भी आप इसी कार्यक्रम में जान पाएंगे। 6:55 पर एक बार फिर हम शामिल होंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र में। 7:00 प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आज कल प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान सुनेंगे आप हमारे स्टूडियो से 7:15 पर। 7:30 सुनेंगे आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग, जिसके तहत सुनवाएंगे आपको कुछ फिल्मी गाने। 7:30 हम ले चलेंगे आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का आंखों देखा हाल सुनेंगे आप, तो इंडिया वर्सेस हांगकांग दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से प्रसारित आप आंखों देखा हाल सुनेंगे 7:30 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:00 हिंदी समाचार, 9:00 अंग्रेजी समाचार, 9:15 पर उर्दू समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे और पुनः खेलों का आप लुत्फ उठा सकेंगे 9:30 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम आपको सुनवाएंगे। 11:00 हिंदी समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी समाचार और 11:10 से आप पुनः खेलों का आनंद ले सकेंगे। तो यह थी जानकारी कार्यक्रमों से संबंधित। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागरंग के तहत आइए सुनते हैं परवीन सुल्ताना से गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग में अभी आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना को। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का राग रंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरिता में बस कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे चंदन दास को।

अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की गाई चंद गौसलें, और इसी के साथ ही सुगम संगीत का स्वर सरता कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी अंग्रेजी में समाचार, और उसके बाद प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाद डबेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि

0: इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Update rahe, aage rahe. X par at AIR News Hindi aur Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
6: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाए रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
7: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल सीबीआई को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का पांचवा विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
8: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली आईसीसी विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
9: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
10: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बालियापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
11: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
12: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज की ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी। गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिरैया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा छठी और नवीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices. Prime Minister Modi to hold talks with his Belgian counterpart, Bart De Wever, in New Delhi today. ISRO to launch Earth Observation Satellite EOS-5 from Sriharikota tomorrow. India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating Agency. Bombay High Court orders CBI probe into death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. And in women's cricket, India to take on Hong Kong in the second Group A match of 2020 Asia Cup in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water organized by the Minister of Jal Shakti yesterday. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. We have more from a correspondent.
14: Prime Minister Narendra Modi emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Appreciating the intensive two-day deliberations, Mr. Modi suggested that the summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process of review and follow-up. Emphasizing Jan Bhagidari, Mr. Modi suggested promoting Jal Utsav to create greater awareness among people. Prime Minister called for making desilting a regular program and developing clear criteria and SOPs for desilting. On dam safety, Mr. Modi stress rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions, and creating awareness among school students, including through suitable incorporation in educational curricula. Prime Minister further called for strengthening knowledge and capacity on water management and governance in universities and higher educational institutions. He suggested structured interstate study visits involving public representatives, officials and farmers to facilitate practical learning and replication of successful interventions. Mr. Modi also called for robust water data governance, with water sector data brought together, systematically managed, analyzed and effectively utilized. He recommended the use of AI for data collection and analysis through a uniform format. He also stressed anticipatory and integrated planning to address water scarcity through suitable utilization of treated water for agriculture and industrial purposes. With Subarna Saikia, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
13: Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations, as well as regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a three-day visit to India. Prime Minister De Wever has been accompanied by Belgian Minister of Defence, Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote address at a Confederation of Indian Industry business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. Our correspondent reports that the visit will provide an opportunity to further strengthen the India-Belgium partnership and advance cooperation in areas of mutual interest, including trade and investment, defense and security, and renewable energy.
15: India and Belgium share historical ties spanning over three centuries. Belgium was among the first European countries to establish diplomatic relations with independent India in September 1947. Belgium is an important economic partner for India in Europe. Bilateral trade reached over $13 billion in 2025-26. Diamond trade, with Antwerp as a major global diamond hub, remains a significant component of bilateral commerce. Belgium is also an important source of investment in India. FDI inflows from Belgium amounted to approximately $4.2 billion between April 2000 and December 2025. Science, technology, and innovation cooperation is an important pillar of the partnership, and India and Belgium have developed cooperation in renewable energy, clean technologies, and sustainability. Defense cooperation is also emerging as an important new dimension of the partnership, reflecting the diversification of bilateral ties into strategic and security-related areas. Belgium's appointment of a defense attaché in New Delhi reflects this intent of deepening cooperation in defense. The Indian diaspora is an important bridge between the two countries, with around 35,000 people of Indian origin in Belgium, contributing substantially to economic, social and cultural life in that country. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
13: ISRO Chairman V. Narayanan has said that the EOS 05 Earth Observation Satellite will be launched tomorrow. The satellite is scheduled to lift off at 2:55 a.m. aboard the GSLV F-17 rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Mr. Narayanan said EOS 05 is a state-of-the-art Earth observation spacecraft and India's first imaging satellite to be placed in a geosynchronous orbit.
16: We in ISRO is proud to inform that we are going to have a launch of Earth Observation Satellite 05 using our GSLV vehicle, GSLV F-17, on 4th September, early morning, 2:55 a.m. This is the first satellite, Earth Observation Satellite, which is going to be placed in the geo platform for advanced Earth observation purpose.
13: Japan credit rating agency JCR has upgraded India's long-term foreign currency and local currency issuer ratings by one notch from BBB+ to A-, while maintaining the stable outlook. JCR has also raised India's country ceiling by one notch to A. Finance Ministry said that the upgrade reflects India's solid economic growth, the effectiveness of economic policies in strengthening the foundations for growth, and the improved soundness of the financial system. We have a report.
6: The ministry said that the upgrade comes against the backdrop of a challenging global environment and underscores the continued strengthening of India's economic fundamentals, supported by sustained growth, effective economic policies, improved fiscal quality, and stronger financial system. In a statement, JCR noted that the Indian economy has maintained a high growth rate supported by robust private consumption and public investment. The agency also highlighted the Indian government's continued implementation of policies
17: including the development of digital public infrastructure and implementation of goods and services tax, which has strengthened India's economic foundations. The agency also recognized the improvement in quality of fiscal expenditure, with greater emphasis on capital expenditure, particularly infrastructure and JCR noted that the central government's fiscal deficit declined from 4.7% in financial year 25 to 4.4% in financial year 26, while capital expenditure remained high. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
13: This is Akashwani giving you the news.
3: Stay in the know wherever you are. Follow us on X and Threads at AIR News Alerts.
13: The Bombay High Court has ordered a CBI probe into the death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. Disha Salian died on June 8, 2020 after falling from the 14th floor of a residential building in the Mumbai suburbs. We have more from a correspondent.
7: In the Disha Salian death case, a division bench of Justices Sarangvi Kotwal and Ranjit Sinha R. Bhosle yesterday directed the CBI to register an FIR based on the complaint filed by her father, Satish Salian. The court has further clarified that the direction to register the FIR does not imply any finding of guilt against anyone. The bench said nobody shall be treated as an accused unless, in the opinion of the investigating officer, there are sufficient grounds to raise objectionable suspicion against him, depending on the material collected during the investigation. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
13: The death toll from the devastating Nepal-Tibet flash floods has surged to 1,250 as rescuers battled rain and debris to trace those believed to be trapped in the tunnels along the course of the Bhote Koshi River and underground powerhouses in the Himalayan nation. Prime Minister Balendra Shah said the disasters linked to climate change must be strongly raised with the international community, as symbolic funerals were held by families of locals still missing after last week's flash floods. Among the missing people, 583 are foreigners. Fresh flood threat has emerged in northern Odisha as the Subarnarekha River continues to swell in Baleshwar district. The river at Rajghat is flowing well above the danger level, with water release from Guludi Barrage in Jharkhand adding to the downstream flow. Flood water has entered several villages in Baliapal, Bograi and Jaleshwar, disrupting road connectivity and affecting normal life. We have more from a correspondent.
10: The flood situation in northern Odisha remains a concern, with the Subarnarekha River flowing above the danger level at Rajghat in Baleshwar. The river touched about 11.5 meters against the danger level of 10.36 meters. Water released from the Guldihi Barrage in Jharkhand has added to the downstream flow. 13 gates were opened during the peak discharge, while the latest report says 9 gates are currently open. Flood water has entered several villages in Bhograi, Baliapal and Jaleshwar blocks, with road connectivity disrupted in many areas. In Mayurbhanj, the Jalaka and the Subarnarekha rivers are also above the danger levels, while the administration continues to evacuation and relief operations. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
13: Weather department has forecast rain in several parts of Madhya Pradesh. Heavy rain is also possible in some districts. We have a report.
18: Rain is likely in many parts of Madhya Pradesh today. Jabalpur, Rewa, Shahdol and Sagar may receive rain. Some parts of Bhopal, Gwalior, Chambal and Narmadapuram division may also receive rain. In Mandla, rain continued from Tuesday evening to Thursday morning. In Satna, heavy rain has caused flooding and waterlogging in some areas. Relief work is continuing in the affected areas. So far, assistance of 18,01,000 rupees has been given for 434 affected houses. Health teams are also working in the affected areas. In Chitrakoot, more than 2,700 people have been checked across the district. About 6,125 people have received health checkups. The administration is keeping a close watch on the situation and providing necessary help in the affected areas. For Akashwani News, I am Vipin Mishra from Bhopal.
13: In Uttar Pradesh, a special HPV vaccination campaign aimed at preventing cervical cancer will be conducted across the state from today till the 17th of this month. The campaign will be held in all 75 districts of the state. Around 10 lakh eligible adolescent girls in the 14-year age group are being targeted for HPV vaccination under the drive. In women's cricket, India will take on Hong Kong in the second group A match in the 2020 Asia Cup at Dubai International Stadium in the UAE today. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. The women in blue opened the campaign with a convincing 94-run win over Thailand in Dubai on Sunday. A victory over Hong Kong will help the Harmanpreet Kaur-led side secure a place in the semi-finals of the ongoing 8-team tournament. India will host the Hyundai World Archery Para Series for the first time at Ahmedabad Sabarmati Riverfront from September 5th to 9th with over 100 athletes from 20 countries participating. The event is the third stage of the 2026 series following competitions in Bangkok, Novemynesto and Chekyo from June 30th to July 4th. The fourth and final stage is scheduled to be held in Santiago, Chile in October. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
6: Thank you, Abhishek. IAF Sindoor veteran retired Air Marshal Jitendra Mishra is first Ram Temple CEO, informs Hindustan Times. From MiG-21 to ATR, ex-group captain Abhinandan Vardhaman prepares to fly passengers, reports the Pioneer. On the death of celebrity manager Disha Salian, the Times of India quotes the High Court as saying CBI probe necessary into Disha Salian's death. Global temperature rise to cross 1.5 degrees centigrade threshold, warns United Nations, states Economic Times. India sends Nepal's fifth tranche of aid, 11-member rescue team, reports the Asian Age. And finally, Meena Kumari classic Pakiza gets a facelift set for world premiere in October, writes the Indian Express, adding that restored masterpiece will be screened at France's Festival Lumiere in Lyon, followed by special screening during BFI London Film Festival. And with that, it's back to you, Abhishek.
13: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices. Prime Minister Modi to hold talks with his Belgian counterpart, Bart De Wever, in New Delhi today. ISRO to launch Earth Observation Satellite EOS-05 from Sriharikota tomorrow. India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating Agency. Bombay High Court orders CBI probe into death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. And in women's cricket, India to take on Hong Kong in the second Group A match of the 2020 Asia Cup in Dubai this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
19: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं 8:30 हुए हैं थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार
20: वेक्टरजनित रोग मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकनगुनिया कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें अपने घर के आसपास सफाई रखें जल जमाव न होने दें पानी के बर्तनों को ढक कर रखें पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं
21: बुखार होने पर ओझागुनी के पास न जाएं अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
20: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
19: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या वृद्धि और पानी की जरूरतों के बारे में जागरूक करने का किया आह्वान। झारखंड ने सिंचाई योजनाओं के लिए केंद्र से 3,000 करोड़ रुपए का सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, रांची सहित राज्य के अन्य शहरों का होगा सुनियोजित विकास। बंद होंगे अनावश्यक रोड कट, हर वार्ड में बनेगा वेंडर मार्केट। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने की समीक्षा बैठक, सभी जिलों में जांच व्यवस्था के निर्देश। रांची नगर निगम ने बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज की। लालपुर में 5 संस्थानों को किया सील। और राज्य में निम्न दबाव का क्षेत्र हुआ कमजोर, आज कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान, कल से छटेंगे बादल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: नई दिल्ली में जल जीवन मिशन समिट 2026 के समापन सत्र में झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन और योगेंद्र प्रसाद ने जल संरक्षण, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन का राज्य का रोड मैप प्रस्तुत किया। इस मौके पर हफीजुल हसन ने बताया कि राज्य में 80% वर्षा जल बह जाता है और 24.25 लाख हेक्टेयर में से अब तक केवल 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता ही विकसित हुई है। इसलिए अब मौजूदा संरचनाओं के उपयोग और रिसाव रोकने पर जोर है। राज्य सरकार ने पटमदा बोडाम और नीमडी कुकड़ू मेगा लिफ्ट परियोजनाओं और पलामू के अमानत बराज के लिए केंद्र से करीब 3,000 करोड़ रुपए का सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में नगर विकास और पथ निर्माण विभाग की ओर से संचालित कार्यों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शहर की सड़कों के बीच बने अनावश्यक कटों को चिन्हित कर उन्हें बंद करने और वाहनों के लिए निर्धारित चौक चौराहों से ही सुरक्षित टर्निंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी वेंडर्स को चिन्हित करते हुए उनके लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राज्य में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग एवं एनएचएम की समीक्षा बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में स्वाइन फ्लू की स्थिति, जांच व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस अवसर पर अजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड के सभी जिलों में जल्द से जल्द स्वाइन फ्लू की जाँच शुरू की जाए। इधर अब रांची सदर अस्पताल में भी स्वाइन फ्लू के लिए जांच की सुविधा शुरू की जाएगी। रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश कुमार ने इसकी जानकारी दी।
2: पूरे झारखंड में एक ही जगह रिम्स में H1N1 की जांच की व्यवस्था थी। अब हमारे सदर अस्पताल रांची में इसकी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। किट वगैरह आता है उसको जाँच करने के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है।
0: झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने सरकार से 108 एम्बुलेंस सेवा की मौजूदा टेंडर प्रक्रिया रद्द कर इसे जिला स्तर पर सिविल सर्जन की निगरानी में संचालित करने और निजी एजेंसी द्वारा हटाए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि 8 सितंबर तक कार्रवाई नहीं होने पर राज्य भर में लोकतांत्रिक आंदोलन की चेतावनी दी है। रांची के खेलगांव स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में आज से 15 सितंबर तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में बड़ी संख्या में झारखंड के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और रांची पुलिस ने सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारी की है। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से मूल दस्तावेज सुरक्षित रखने, किसी को पैसे नहीं देने और ठगी से बचने की अपील की है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @ AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची नगर निगम ने बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए लालपुर में 5 संस्थानों को सील कर दिया। निगम के अनुसार पहले नोटिस दिए जाने के बावजूद नियमों का पालन न करने पर एनफोर्समेंट टीम ने दस्तावेजों की जांच के बाद सीलिंग की कार्रवाई की। पूर्वी सिंहभूम जिले में चांडल थाना क्षेत्र में 24 अगस्त को हुई कारोबारी निखार सबलोक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। SSP एहतेशाम वकारब और सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने संयुक्त प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी। मामले में मास्टरमाइंड सहित 6 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
3: फैमिली रेस्टोरेंट में 10th माइल में अपराधियों ने एक निखार सबलोक नाम के व्यक्ति को हत्या कर दी फायरिंग करके, और जिसको TMA लाया गया, जहां उनको मृत घोषित किया। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कुछ लोगों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। कारण मुख्य रूप से अब तक जो आया है जमीन विवाद को लेकर।
0: हजारीबाग पुलिस ने जिले में लगातार छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले कुख्यात कोढ़ा गिरोह के 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 4 बाइक और सोने के आभूषण बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक

0: अमन कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरोह कई जिलों में सक्रिय था।
1: सबसे पहले चार लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनके निशानदेही पर जो है चौपारण से तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये लोग लगातार इनका सहयोग करते थे, छीना हुआ कुछ सामान इन लोगों को भी देते थे। कुल बरामद सामान में अभी सोने का आभूषण 27 ग्राम, चोरी का मोटरसाइकिल 4, खुजली होने वाला पदार्थ कुछ पुड़िया 23 पुड़िया बरामद किया गया है, कीपैड मोबाइल 6 और फर्जी नंबर प्लेट जो ये लोग लगा के आते थे वो 6 बरामद किया गया है।
0: जमशेदपुर में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण स्वर्णरेखा और खरकई नदियां उफान पर हैं, जिसमें खरकई खतरे के निशान से 4.50 मीटर और स्वर्णरेखा 1.24 मीटर ऊपर बह रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के चलते चांडल डैम, गालुडीह बैराज और ओडिशा के डैम बैराज के 45 से अधिक फाटक खोले गए हैं। बावजूद इसके बागबेड़ा, मानगो, जुगसलाई समेत 6 इलाकों के 1000 से अधिक घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने तटीय और निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है, जबकि एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट पर है। मौसम विभाग के अनुसार आज से झारखंड को बारिश से राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र अब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया है, लेकिन नमी का प्रभाव जारी है, जिसके कारण झारखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश अभी भी संभव है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सीएम की समीक्षा बैठक को अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, हटेगा अतिक्रमण, हर वार्ड में होगा वंडर मार्केट, शहरों का बनेगा मास्टर प्लान। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ख्यांगते की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला 5 सितंबर को। दैनिक जागरण लिखता है, पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ। हिंदुस्तान के शब्द हैं, डीजीपी नियुक्ति मामले की सुनवाई अब 7 को होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या वृद्धि और पानी की जरूरतों के बारे में जागरूक करने का किया आह्वान। झारखंड ने सिंचाई योजनाओं के लिए केंद्र से 3,000 करोड़ रुपए का सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, रांची सहित राज्य के अन्य शहरों का होगा सुनियोजित विकास, बंद होंगे अनावश्यक रोड कट, हर वार्ड में बनेगा वेंडर मार्केट। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने की समीक्षा बैठक, सभी जिलों में जांच व्यवस्था के निर्देश। रांची नगर निगम ने बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज की, लालपुर में 5 संस्थानों को किया सील। और राज्य में निम्न दबाव का क्षेत्र हुआ कमजोर, आज कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान, कल से छटेंगे बादल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। दोस्तों अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन का। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गाने के साथ।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के लिखे गीत को स्वर दे रहे थे मोहम्मद रफ़ी। फिल्म थी दो रास्ते। दोस्तों, आज गीत गुंजन की महफिल सजी है महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध गानों से। आज इस जोड़ी के संगीतकार प्यारेलाल जी का जन्मदिवस है, हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की दिग्गज जोड़ी ने कई सुपर डुपर गाने दिए जो सदाबहार हैं, बेमिसाल हैं और जब भी गूंजते हैं, सुनाई देते हैं तो मन को सुकून देते हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला।

मित्रों, आज बंगाली सिनेमा के महान कलाकार, जिन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि निर्माता, निर्देशक, संगीतकार के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई, उनका नाम उत्तम कुमार जी, जिनकी जयंती है आज और कला प्रेमी आज जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया था, छोटी सी मुलाकात जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया था, अमानुष, आनंदाश्रम, खताब, दूरियाँ, इन फिल्मों में उन्होंने काम किया था। उनकी जोड़ी सुचित्रा सेन के साथ सुपर डुपर हिट रही थी और बंगाली फिल्मों के वो महान नायक थे। वो अपनी कलाकारी से उन्होंने जो छवि बनाई अपने प्रशंसकों के दिलों में, वो आज भी कायम है। चलिए सुनवाते हैं दूरियां फिल्म का गाना।

0: भूपिंदर सिंह और अनुराधा पौडवाल के गाए इसी गाने के साथ ही फिल्म संगीत का गीत गुंजन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। मित्रों आइए, समय हो गया है जोहार पलामू कार्यक्रम का, तो शुरू करते हैं यह कार्यक्रम। प्रस्तुति स्वर है निर्मला तिवारी का और संयोजन करता है श्री प्रशांत गौरव।
1: जोहार पलामू।

जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप तमाम साथियों का हमारे इस कार्यक्रम में। सपनों की उड़ान वही भरते हैं जिनके पंख हौसलों से बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन हौसला है अगर तो कोई भी बाधा आए राह मिल ही जाती है। इसलिए हौसला बुलंद रखिए, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। इन्हीं सुविचारों के साथ अब बातें कर लेते हैं मौसम की भी। बंगाल की खाड़ी और उत्तरी तट ओडिशा के ऊपरी निचले दबाव का असर हमारे राज्य पर भी है। हमारे ज़िले पलामू की यदि हम बातें करें तो हमारे ज़िले में भी लगातार भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। वैसे आज से राहत मिलने की संभावनाएं बताई गई हैं मौसम विभाग के द्वारा। जी हाँ, तापमान की यदि हम बातें करें तो तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है आज, और कल का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब वर्षा से कुछ राहत मिलने की उम्मीद तो जताई जा रही है। देखिए, मौसम है, मौसम का कोई भरोसा नहीं। तो ये तो ही मौसम की जानकारी, और आइए अब सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गाना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं जोहार पलामू कार्यक्रम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, और आज आपके साथ है आपकी दोस्त निर्मला। चलिए अब बातें कर लेते हैं स्वास्थ्य की। दोस्तों अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए, यानी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए छोटी छोटी सी कई बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और बार बार हम आपसे आप लोगों से अनुरोध करते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि यदि हम अपनी दिनचर्या नियमित कर लें तो हम अपने स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक ठीक रख सकते हैं। यानी समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर भोजन लेना, सारी क्रियाएं यदि हम समय पर करें तो फिर हमें अपने स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही असंतुलन होता है, हमारी दिनचर्या असंतुलित हो जाती है, समय पर हम भोजन नहीं करते हैं, समय पर सोते नहीं हैं और देर तक सोते रह जाते हैं, रात को देर तक जागते रह जाते हैं, भूखे रह जाते हैं काफ़ी देर तक, तो इससे हमारे शरीर में भी असंतुलन पैदा हो जाता है और उससे हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। यदि हम अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योगा करें और सुबह की सैर करें, भरपूर पानी पिएं और अपने खान पान को नियंत्रित रखें, तले भुने चीज़ों से परहेज करें, संतुलित और पौष्टिक भोजन लें, ताज़ा भोजन लें, तो इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुपोषण की समस्या से बचने के लिए संतुलित भोजन लेना आवश्यक है, और यह प्रक्रिया तभी से शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है। गर्भवती माताओं को चाहिए कि अपने बच्चे के लिए वो अपने खान पान का ध्यान रखे जी, क्योंकि उसका सीधा असर उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। यदि वह भोजन संतुलित नहीं लेती है, अपने आहार विहार का ध्यान नहीं रखती है, तो होने वाला शिशु कई बीमारियों की चपेट में वो जन्म से ही आ जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, उसे कई तरह की शिकायतें हो जाती हैं, उसका शारीरिक विकास सही नहीं हो पाता है। इसलिए गर्भ से ही गर्भवती माताओं को चाहिए कि अपने शिशु का वो ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, संतुलित भोजन लें और अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। ऐसा करने से उनके बच्चे स्वस्थ होंगे, और जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो उन्हें भी उनकी दिनचर्या को नियमित रखने में माताएं उनकी मदद करें, तो बचपन से ही यदि आदत डाल दी जाएगी कि समय पर सो जाना है, जल्दी उठ जाना है और अपना सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन सब समय पर लेना है, किस समय क्या खाना चाहिए, ये सब कुछ थोड़ा ध्यान रखा जाए तो फिर परेशानी नहीं होती है बहुत ज़्यादा। जी हाँ, आज के दौर में एनीमिया की शिकायत भी बहुत हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों में एनीमिया आ जाता है। क्यों? क्योंकि खून की कमी होती है, और ऐसा इसीलिए होता है कि खान पान का ध्यान नहीं रखा जाता है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए अब हमें फिर से उसी दौर में लौटना होगा और मोटे अनाजों को अपने भोजन में शामिल करना होगा, क्योंकि दौड़ती भागती जिंदगी में हमने अपने आप को इस तरह से बना लिया है कि जो मिलता है वही खा लेते हैं। अगर मैं कहूं कि कचरा खा लेते हैं तो बात सही है, क्योंकि बासी हो, जैसा भी हो, फास्ट फूड है, वो कुछ भी हम ले लेते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भले ही थोड़ी देर के लिए हमारी भूख को शांत कर देता है, लेकिन हमें वह कोई ऐसा पौष्टिकता प्रदान नहीं करता जिससे हमारे शरीर को लाभ हो, बल्कि नुकसान ही पहुँचाता है। इसलिए कभी कभार तो ठीक है, लेकिन नियमित तौर पर जंक फूड का सेवन, ये सब कुछ करना सही नहीं है, और बच्चों को भी इससे परहेज कराना चाहिए। मोटे अनाज जैसे कि बाजरा है, रागी है, ज्वार है, इन सब में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, GI कम होता है, जिससे रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और कब्ज से राहत दिलवाते हैं, यानी कि पाचन तंत्र में सुधार होता है। ग्लूटेन फ्री और कम कार्बोहाइड्रेट वाले ये अनाज वजन घटाने में काफ़ी मददगार होते हैं, यानी कि वजन भी घटता है, मोटापा कम रहता है। पर्यावरण और कृषि के लिए भी ये लाभदायक होते हैं,
क्योंकि ये फसलें सूखे और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उग जाते हैं, इसलिए ये कृषि के लिए भी लाभदायक हैं। जलवायु के अनुकूल हैं, ये उच्च तापमान पर यानी कि 46 डिग्री तापमान तक सहन करने की क्षमता रखते हैं, तो जलवायु के लिए भी अनुकूल हैं। इनकी खेती से पर्यावरण पर दबाव भी कम पड़ता है और सतत कृषि को बढ़ावा भी मिलता है, यानी कम कार्बन फुटप्रिंट होता है। तो मोटे अनाजों को अपने भोजन में अवश्य ही शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मिलेट्स यानी कि मोटे अनाजों को अपने भोजन में शामिल कीजिए, उसके साथ ही पौष्टिक भोजन कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, नियम से ही अपनी दिनचर्या का पालन कीजिए, सही समय पर सो जाइए यानी रात्रि को जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी जाग जाइए। अपने भोजन को भी आप संतुलित रखिए, भूख लगे आप कुछ ना कुछ अवश्य खाइए। काफ़ी देर तक भूखे रहने से अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी की शिकायत हो जाती है और पेट संबंधी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह छोटी छोटी सी महत्वपूर्ण बातें हैं मित्रों, जिसका हम ध्यान रखें, ख्याल रखें, तो अपनी सेहत का हम ख्याल रख सकते हैं जी। तो ये तो हुई सेहत की बातें, और चलिए बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर, सुनवाते हैं आपको एक और गाना।

चलिए अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने और आज की तारीख में दर्ज प्रमुख घटनाओं पर डालते हैं नज़र। सन 1783 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि के साथ क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हो गया था। आज ही की तारीख को अमेरिका में पहली सफल समाचार पत्र न्यूयॉर्क सन बेंजामिन एचडे के द्वारा शुरू किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविले चेम्बरलिन के द्वारा एक रेडियो प्रसारण पर ब्रिटेन और फ्रांस का जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी आज ही की तारीख को। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने इटली पर हमला किया था आज ही की तारीख को। कतर स्वतंत्र राष्ट्र बना आज ही की तारीख को सन 1971 में। दक्षिण फिलीपींस में आए एक भयानक तूफान की वजह से करीब 1300 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे आज ही की तारीख को। नेल्सन मंडेला के द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर प्रधानमंत्री उस समय के वाजपेयी जी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी आज ही की तारीख को। रूसी सैनिकों ने अपहरणकर्ताओं के कब्जे से स्कूल को मुक्त कराया आज ही की तारीख को सन 2004 में। यूरोप का पहला त्रिवर्षीय चंद्र मिशन समाप्त हो गया था और भारतीय मूल के भरत जगदेव ने गुआना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी आज ही की तारीख को। भारत और पाकिस्तान में अचानक आई बाढ़ के कारण 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी आज ही की तारीख को। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो आज की तारीख में दर्ज हैं और कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में भी जान लेते हैं जिनका जन्म हुआ था या जिनकी मृत्यु हुई थी। कमलापति त्रिपाठी भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक, उनका जन्म हुआ था आज ही की तारीख को यानी कि 3 सितंबर को। सुप्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज जी का भी जन्म हुआ आज ही की तारीख को। भारतीय सिनेमा में बंगाली और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता उत्तम कुमार का जन्म हुआ आज ही की तारीख को। विश्व प्रसिद्ध रहस्यवादी और भारतीय मूल के योगी जग्गी वासुदेव का जन्म हुआ आज ही की तारीख को। और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल में से प्यारे लाल जी शर्मा का जन्म हुआ आज ही की तारीख को। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी राहुल सांघवी का भी जन्म हुआ आज ही की तारीख को। और भारतीय अभिनेता विवेक ओबेरॉय का भी जन्म आज ही की तारीख को हुआ है। भारतीय मूल के अंग्रेजी उपन्यासकार किरण देसाई का भी जन्म आज ही की तारीख को हुआ है। भारत के प्रसिद्ध महिला पहलवान साक्षी मलिक का जन्म भी आज ही की तारीख को हुआ। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और चलिए बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर।

0: उस नज़र को ढूंढता है। दोस्तों चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़िंदगी का भरपूर आनंद लेते रहें। और साथ ही साथ आज विवेक ओबराय का भी जन्मदिवस है, तो उनको हम बधाई देते हैं, उनके स्वस्थ जीवन कामना करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे भविष्य की। और इसी के साथ ही जोहार पलामू कार्यक्रम से अब आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे जोहर पलामू कार्यक्रम, प्रस्तुति स्वर था निर्मला तिवारी का, संयोजनकर्ता थे श्री प्रशांत गौरव। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियाँ भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
1: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे। लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
1: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
1: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही, इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
2: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओ, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
2: श्रोताओ, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
2: जी
1: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
2: श्रोताओ, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
1: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
2: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
1: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियाँ इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
2: अच्छा, तो ये बात है।
1: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
2: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया।
1: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
2: श्रोताओ, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
1: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
2: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
1: और फिर ट्रेन आती है।
2: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
1: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
2: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
1: विमलेश जी, जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
2: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
1: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
2: जी,
1: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
2: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
1: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
2: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
1: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
2: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
1: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
2: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं, उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
2: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
1: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
1: अब अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
1: माला की चांदी की पायल।
3: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
4: अरे माला तू।
3: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
5: बहन जी, डाकिया।
3: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई।

0: एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
1: माला, यह तुम्हारे लिए है।
0: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की होश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेस से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
3: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
7: ऐसे ऐसे
8: झूठ मत मारना।
7: सैम है ना? अरे इधर तू आओ।
9: हाँ हाँ आते हैं।
7: सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
8: हम तो तैयार हैं मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
7: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
9: कैसा प्रयोग?
7: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
8: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
7: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
8: अच्छा
7: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुंच जाओ।
6: अच्छा।
7: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
8: ठीक है।
7: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है।
6: अच्छा।
7: सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
9: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
7: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
9: हाँ हाँ।
7: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
9: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
8: अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है!
9: अरे वाह, मार्कोनी, क्या क्या बात है!
8: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह,
6: क्या बात है!
8: अरे वाह,
7: सिग्नल मिला?
8: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
4: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक

0: कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
1: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
0: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।
2: सुन सुन, ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
3: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: अरे रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है, वाह!
0: रॉबर्ट, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत

0: और वायलिन का संगीत था।
1: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।

0: अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
1: इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता,
2: अरे ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
3: अरे अरे भागो भागो बाहर निकलो, भागो डेक की ओर भागो।
4: क्या हो गया?
5: अरे ये क्या हो रहा है? यार पूरी तरह हिल रहा है।
0: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
2: जहाज की स्पीड कम करो, ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हरे।
6: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
2: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो, सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेल्प लाइट सिग्नल भेजो, सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
0: जल्दी जल्दी करो,
2: जीवन रक्षक नावों को नीचे उतारो, लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
7: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
1: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
0: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
1: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
0: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
1: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
8: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
9: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
10: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
11: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो
12: विश्वास नहीं
13: होता। मिस्टर मार्कोनी
14: जी,
13: अच्छा ये बताइए, यह आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है?
14: जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
13: गुड गुड।
14: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
13: बिल्कुल।
14: धन्यवाद।

0: श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में।
5: के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट ड वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
5: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार की ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं। उच्च न्यायालय ने CBI को प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, लेकिन ये भी साफ किया कि जांच के दौरान किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा, कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इन नियमों को पिछले महीने की 27 तारीख को अधिसूचित किया था और 29 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों में भारतीय मानक समय के निर्धारण, रखरखाव, प्रसार और उपयोग के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 180 दिन बाद लागू होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा, किसी सच्ची प्रतिभा को जब सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण में विकसित किया जाए तो वो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत बन सकती है।

0: born on American soil, regardless of their parents' immigration status. In response to the Supreme Court's rejection, President Trump signed a revised executive order on August 6th, specifically targeting birth tourism and denying citizenship to children of foreign government workers, individuals involved in immigration fraud. However, lawyers representing babies affected by the restrictions successfully asked the judge to intervene. In women's cricket, India will take on Hong Kong in their second Group A match in the 2020 Asia Cup at Dubai International Stadium in UAE today. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. The women in blue opened their campaign with a convincing 94-run win in Thailand in Dubai on Sunday. A victory over Hong Kong will help the Harmanpreet Kaur-led side secure a place in the semi-finals of the ongoing eight-team tournament. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुना है कि सिंथेसाइजर भी बजाया करती थी और श्रोताओं को बता दें कि ज्योति जी के पास गुणों का खजाना है, उनके गुणों की चर्चा हम करते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में। तो सिंथेसाइजर वाली बात बताइए, कब कहाँ से सीखा और कहाँ से विचार आया?
2: नहीं, दरअसल जब भी मेरी बेटियां छोटी थी, शिखा चानी, दोनों जब बच्ची छोटी थी तो पहले एक छोटा सा सिंथेसाइजर हुआ करता था, कुछ एक फुट का होता था, वो बहुत बड़ा नहीं होता था, तो वो हमने बच्चों को ला करके दिया और बच्चे बजाते थे
1: जी।
2: मेरी जो बड़ी बेटी है वो बड़ी अच्छी धुनें निकाल लेती थी मन से।